0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 6 AM
3: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

त जति पकाए नि मान्दिन हौ सनाछी के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

असोज 17 गते शनिबार समय बिहान 10 बजे देखि 12 बजे सम्म स्थान नवदृष्टि आँखा उपचार केन्द्र तुमलिङ टार। फोन नम्बर 0295752067, मोबाइल नम्बर 9865546460। यहाँ 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 9 AM
4: अहिले बिहानको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 PM
3: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।